कहूँ वेद रीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो कतहूँ विचार अब चार को विचारत हो कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो कहूँ वेद रीत कहूँ तास विपरीत कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो कहूँ शस्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी कहूँ मारत अहारी कहूँ नार के निकेत हो कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी कहूँ मंगला मृडानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो।

कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंठी धरे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कहूँ डंडी हुए पधारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पै तरत हो, कतहूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन को, कहूँ छत्री होय के अरमारत मरत हो, कहूँ भूम पार को उतारत को महाराज, कहूँ पव पूतन की पावना परत हो, कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कतहूँ पयूक होय के पीवत पिवावत हो, कतहूँ मयूक ऊख कहूँ मदपान हो, कहूँ महासुर है के मारत मवासन, कहूँ महादेव देवतान के समान हो, कहूँ महादीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ पान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंग, कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ शुद्धता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हर्म, कहूँ कुतस कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पौन आहारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ जोगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छाला धरे छैल पारी, कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचैया कहूँ नर को अकार हो, कहूँ वेदवाणी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ धैन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शुद्धता किसान हो के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो के निर्दोखी निरंकार हो, निर्जल निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो, प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया किधो मानी महामान हो, विद्या के विचार हो के अद्वे अवतार हो, के सदता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो, जोबन के जाल हो के कालहू के काल हो, के शत्रुन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ वेद रीत कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत और अनीत।

कोट स्नानक जादिक दान अनेक स्वयंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिशन सचीपत अंत फसे जम फांस परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर ना देह तरेंगे। कां भयो जो दो लोचन मुंद कै भैठ रहे हो भगत ध्यान लगायो।

श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तो मर छंद हर जन्म मरण बहीन दशार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछिज तेज उदार अनभिज रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भू भृत पान दस चार चार निधान अकलंक रूप।

वेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कथित सी पुराण कई अग्न होत्र करांत कई उर्द ताप दुरांत कई उर्द बाहु सन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं निवली कर्म करांत कहूं पौन आहार दुरांत कहूं तीर्थ दान अपार कहूं जाग कर्म उदार कहूं अग्न होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमृत रीत कहूं वेद स्यों विपरीत कई देश देश फिरांत कई एक ठौर स्थांत कहूं करत जल मह जाप कहूं सात तन परताप कहूं बास बनह करांत कहूं ताप तनह सहांत कहूं गृहस्थ धर्म अपार कहूं राज रीत उदार कहूं रोग रहत अपरम कहूं कर्म करत अकर्म कहूं सेक ब्रह्म स्वरूप कहूं नीत राज अनूप कहूं रोग शोक बेहीन कहूं एक भगत अधीन कहूं रंग राजकुमार कहूं वेद व्यास अवतार कहीं ब्रह्म वेद रटांत कहीं सेख नाम उचरांत बैराग कहूं संन्यास कहूं फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह फल मान बिन एक नाम आधार सब कर्म भरम विचार तो प्रसाद लग्न राज छंद जले हरी थले हरी उरे हरे बने हरी गिरे हरी गुफे हरी छिते हरी नभे हरी इहां हरी उहां हरी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभे घरी अधो घरी अद्वैग हरी अकाल हरी अपाल हरी अछेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सुतेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित्र हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अपरम हरी अकर्म हरी अजय हरी अभय हरी अभेद हरी अछेद हरी अखंड हरी अभंड हरी अडंड हरी प्रचंड हरी अतेव हरी अभेव हरी अजेव हरी अछेव हरी भजो हरी थपो हरी तपो हरी जपो हरी जलस्तु ही ठलस्तु ही नदस्तु ही नदस्तु ही वृक्षस्तु ही पतस्तु ही चितस्तु ही ऊर्धस्तु ही भजस्तु अंग रटस्तु अंग ठटस्तु अंग जिमी तु ही जमा तु ही मकी तु ही मका तु ही अभू तु ही अभा तु ही अछू तु ही अछा तु ही जलस्तु ही व्रतस्तु ही।

खोकमल हारी गज गदहा विभूत धारी गिद्धुआ मसान बास करियो ही करत है। गुगु बट बासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदीव मोन साधे ही मरत है। बिंद के सदिया ताहे हिजकी बडैया देत बिंदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के बहीन छिन कैसे तरत है। भूत मन चारी छित छोना सबे दूधाधारी पौन के अहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिन के बचैया धन लोभ के तजिया ते तो गौन के जिया भ्रक मान मानियत है। नब के उडैया ताहे पंछी की नबडैया देत बगुला बडाल भ्रक ध्यानी ठानियत है। जेटे बड़े ज्ञानी तीनों जानी पै बखानी ना है ऐसे ना प्रपंच मान भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कह नब के उडैया सोच रैया कै बखानिया। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदस फ्रिया ते तो भूत कै पछानिया। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सोच तोर साम मानिया। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि कै पहचानिया। नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब तेन चारी दिखी केस नाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेरू को कन्हैया नाम कंस को बदैया जम दूत कहियत है। मूड़ रूड़ पीटत न गूढ़ता को पेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल

पै लगावे बारी कहू दंड डारी हो के लोगन भ्रमावही कामना अधीन प्रियो नाचते हैं नाचन सो ज्ञान के बहीन कैसे भ्रम लोक पावई पंच बार गिद्धर पुकारे परे शीत काल कुंच रो गदहा अनेक पुकारही कहां भयो जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोरटा कुठारन सो मारही कहां भयो फांसी डार बूडियो जल गंगा धार डार डार फांस थक मार मार डारही डूबे नरक धार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना बहीन कैसे ज्ञान को विचारही ताप के सहत जो पपाई है तापनाथ तापना अनेक तन कायल सहत है जाप के किए ते जो पपायत अजाप देव पूत ना सदीव तू ही उचरत है नब के उड़े ते जो पे नारन पयत अनल अकाश पंछी डोल बो करत है आग मैं जरे ते गत रांड की परत कर पताल के बासी क्यों पुजंग ना डर तरत है कौ भयो मुंडिया सन्यासी कौ जोगी पयो कौ ब्रह्मचारी को जिन मानबो हिंदू तुर्क कौ राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचानबो करता करीम सोई राजक रहीम ओही दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मानबो एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत।

सिद्धा बुद्धा ब्रद रूपंग नहीं जान जाही कछु रूप रेखं कहां बासता को फिरे कौन भेखं कहां नामता को कहां का कहावे कहां का बखानो कहे मैं ना आवे ना रोगं ना सोगं ना मोहं ना मातंग ना कर्मं ना परमं ना जन्मं ना जातंग अद्वेखं अभेखं अजोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदं अछे आद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद अभंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगादे अभे आद अद्वै अविनाशी परे अंग परा परम पूरन प्रकाशी न आदंग न व्यादंग अगादंग स्वरूपे अनखंडत प्रताप आद अच्छे विभूते न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्यादे प्रखंडे प्रचंडे अडंडे असाते न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उडंदे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र न भूते पवीखे पवाने अचित्रे न रायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग अभूतंग अभेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र रहेंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अच्छे आद अद्वै अजोहंग न जन्मंग न मरनंग न बरनंग न व्यादंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्भखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अबंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेदंग न परमंग सदेवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तंग प्रभा आद अनुक्तंग प्रतापे अजुक्तंग अच्छे आद अवक्ते अथापे विभुक्तंग अच्छे आद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सोकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न तर्मंग न परमंग न सर्मंग न थाके न परमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग न स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे नमो गंज के मंज के परम पुले कहूं रंग के राज के धर्म लूले कहूं देश के पेश के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अच्छर के पछर के सिद्ध सादे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं ब्रह्म प्रज्ञा कहूं सर्व पूपं कहूं नेह ग्रहं कहूं देह दोखं कहूं औखदी रोग के शोक सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत पानी कहूं जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग हरता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं परम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जच विद्या धरे मानवी।

गंधरा बरीत कही वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहु वेद रीत जग याद कर्म कहु अग्निहोत्र कहु तीर्थ धराम कही देश देश भाकारणन कही देश देश विद्या प्रणांत कही करद भांत भातन विचार नहीं नायक तास पायत न पार कही तीरथ तीरथ परमत सो परम कही अग्निहोत्र कही देव कराम कही करद वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहु राज रीत कहु जोग धराम कही सिमरत शास्त्र उचरत हो कराम न्योली आदि कराम कहु हस्त दान कहु अश्वमेध मख को बखान कहु करद ब्रह्म विद्या विचार कहु जोग रीत कहूं प्रतिचार कहूं हर करत जाच गंधर बगान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं प्रीत करम कहूं वेद रीत कहूं नृत्यचार कहूं गान गीत कहूं करत शास्त्र सिमरत उचार कही भजत एक पग निरातार कही नेह देहन कही गेहवास के भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जोग कल्पन प्रजांत नहीं तदप तास पा यत्न आंत कई करत कोट विद्या विचार कही तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बो करत होम अर जग दान बिन एक नाम एक चेतलीन फोकटो सर्व धर्मा बहीन तो प्रसाद तोटक छंद जय जम्पो जुगण जूह जुअंग भय कंपो मेर प्रयाल पुयंग तप ताप सर्व जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप अभेद अभियंग अनखंड अभूत अछेद अछियंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जे ठटियंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जे रचियंग देव अदेव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुअंग जय ताप ना साप ना भोग शोक सुखंग जय रोग ना सोग ना भोग पुयंग जय खेद ना भेद ना जह जातना पातना मात पितंग जह रचियंग छत्री छत्र छितंग जह रागना रेखना रोग गणंग जह द्वैगना दागना दोख गणंग जह अंडहते ब्रह्मांड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्री सिंदूर बिंद नगेंद नगंग श्री

दुष्ट हर्ता सृष्ट करता जगत में जह गाथ भूत भव भविक भगवान प्रमाण देव अगंज आद अंत अनाद श्रीपत परम पुराख अभंज धर्म के अनकर्म जेतक कीन टौन पसा देव अदेव गंधर्व किन्नर माच कच्छ अपार भूम आकाश जले थले मेहमानी है जह नाम दुष्ट हर्ता पुष्ट करता सृष्ट हर्ता का दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु घालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन कालहू के काल दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतिपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम सर्वभुक्ता सर्वयुक्ता सर्वकर्म प्रवीण सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्म अधीन सर्वसिमृतन सर्वशासन सर्ववेद विचार दुष्ट हर्ता विषभर्ता आदरूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूम आकाश जले थले मह जपत जाप अमांड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिया सब चार आदेव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्वमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता चार विचार वेद भेवना पावई शिव रुद्र उपचार कोट उपेंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंतना मद जागो भूत पवान सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल।

को निंदा जस है कवन कवन पाप कहत रामा कवन जोग को भोग है कवन कर्म अब कराता कवन कहो तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरक सोग है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत मुहे तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहा सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को पृष्ठ है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा कर्म को कर्म है कहा ब्रह्म को नाश कहा जितन की चेष्टा कहा अचेत प्रकाश दोहरा कहा नेम संयम कहा ज्ञान अज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म की हान दोहरा को सूरा

मैं खासुर मर्दन राम कपर्दन छात्र छिते आसुरी बेहंडन दोष्ट निकंदन पुष्ट उदंदन रूप अते चंडासुर चंदन मुंड बेहंडन धूम्र ध्वंसन महक मथे दानव प्रहर करण नरक निवारण दानव प्रहारण नरक निवारण अधम उद्धारण उर्द अधे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन राम कपर्दन आदिव्रते डावरु डबंके बबर भजंके उजाफरंके तेज बरंग लंकुड़िया फांदे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल असुरंग अष्टायद चमके पूखण दमके अत सत झमके फोन फनंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन राम कपर्दन जनांग चंडासुर चंदन मोंड बिमोंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन दुजा फरंकन फणी फुंकारन जोत जिते सरदार बिबरखन दुष्ट प्रहर खन पुष्ट प्रहर खन दुष्ट मथे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन भूम आकाश तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुचम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन नराचन धर्म व्रते श्रुत अचिंती विवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन पाप बिना संतर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रजारण सृष्ट उपारण सूद मते फणी फुकारण बाग बकान शत प्रहारण साध मते सैती स्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज अतुलंग जय जय होसी मैं खासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चार चर चमकारण चिच्छर हारंग धुम दुकारण द्रब मथे डाली प्रदंते जोग जियंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रनाशन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन भर्म विनाशन धर्म दुजे घुंगरू घमांकन शस्त्र झमांकन फणियन फुंकारन धर्म दुजे अष्टाद प्रहासन दृष्ट निवासन दुष्ट प्रनाशन चक्र गते केसरी प्रवाह है शुद्ध सना है अगम अथा है एक ब्रते जय जय होसी मैं खासुर मर्दन आदि कुमार अगाध ब्रते सुर नर मुन बंधत दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अदम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकनी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी मैं खासुर निवासन बाय पताल आकाश अनले संकटी निवारण अदम उदाहरण तेज प्रखर कण तोंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अछे सुदता समर्पण तरक वितरकण तपत प्रताप।

सारे तूर पुजे दंड मंके के हर लंके आदि तंके कुरु कथे जय जय हो सी रक्ता सुर खंडन सोम चक्रत ने सोम मथे बारज बिलोचन प्रतत विमोचन सोच बिसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुन सुबासे दुष्ट कसे चंचला प्रांगी बेद प्रसंगी तेज तुरा

खत्रियान खतंगी अब भंगी आद अनंगी अगाद गते ब्रलाज बिहंडन चछुर डंडन तेज प्रचंडन आद प्रते सुनर प्रतिपारण पत उदाहरण दुष निवारण दो खरे जय जय होसी मैं खास मर्दन विश्व ध्वंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे उन्तन नासे ज्योत प्रकाशे अतुल तले दामनी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रखण पितल तले अष्टायत बाहन बोल निबाहन संत पनाहन गुड़ गते जय जय होसी मैं खास मर्दन आद अनाग अगाद प्रते दुख दोग प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध हरे सारण सनाहे दुष प्रदाहे अर्दल गाहे दोग हरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मैं खास मर्दन साध प्रदक्षण दुष्ट हंते कारण करी ली गर्भ गही ली ज्योत ज्योति ली तुंद पते अष्टाद चमकन शत्र झमकन दमन मक्कन आद प्रते डुक डुकी डमंक बाग

जा हो सी मैं खासन मर्दन धूम्र विध्वंसन आदक थे रक्तासुर मर्दन चंड चक्रतन दानव अर्दन बडाल बधे सरदार विवरखन दुर्जन दर्कन अतुल अमरखन धर्म दुजे तुम राज कुंदन श्रोण चुनसन सोम

तो प्रसाद पादवी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिम कियो आप करते प्रसार जिद अभूत अनभय अनंत को तो कहो जथा मत त्रय अनंत करता करीम कादर कृपाल अद्वै अभूत अनभय दयाल दाता दुरंत दुख दोख रहा जह नेत नेत सबेद कहत की ऊंच नीच की नो बना संवार पार जाको प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों ना सेवनता है कई मूड पत्र पूजा करंत की सिद्ध साध सूरज सिवंद की पलट सूर्य सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै अखाए अनछीज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छे स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हर्त साता दयाल अंजन भिन्न अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र नाथ जय जात पात नहीं भेद पराम जय रंग रूप नहीं एक तराम जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अचल अपार जानी ना जाए जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भेक कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भार करुणान धान कारण स्वरूप जय चक्र जह नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की कर्त पाल उर्धंग बृहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग अपार जुद्धंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अनछिज तेज अनभिज अदा जल थल महीप मंथन दुरांत जह नेत नेत निस दिन उचरांत पायो न जाय जह पैर पा दीना लोक दहता उदार कई कोट इंद्र जह पानहार कई ओट इंद्र कई कोट रुद्र

पाच पशु नग नाग नराधृप सर्व समय सबको प्रतपारा पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारा दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है पर देत नहारा दाहत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारा अखंड अखंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारा पार न पाए सका पद मापत वेद कतेब अभेद उचारा रोज ही राज बिलोक तराजक रोक रुवान की रोजी नटारा कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवी के भवान बनाए देव अदेव खपे अहमेव न पेव लखियो भ्रम स्यो भ्रमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ नहाए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पात श्रियो केन श्री पद्मापद पाए आद अनंत अकाद अद्वेक सो भूत भवीक भगवान अब है अंत बहीन अनात्म आप अदाग अदोग अच्छित्र अच्छा है लोगन के करता हरता जल मैथल मै भरता प्रभ वह है दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर सी प्रद मापत ए है कामना क्रोध ना लोभ ना मोह ना श्रोग ना सोग ना

और की बात कहां के पट भी जाही नेत बेदिया आवे। नारद से चतुरानन से रुमनारिक से सबहु मिल गायो, वेद कते ना भेद लखियो, सबहार परे हर हाथ ना आयो, पाए सके नहीं पार उमापत, सिद्ध सनात सनातन ध्यायो, ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमतोज सब जग छायो, वेद पुराण कतेब कुरान अभेद निपान सब पचहारे, भेद ना पाए सकियो अनभेद को, खेदत है अनछेद पुकारे, राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साख ना सोग ना संग तिहारे, आद अनाद अगाद अभेद अद्वेग जप्यो नहीं तुल तारे, तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत तारे, देश प्रियो कर भेष तपोधन केस धरे ना मिले हर प्यारे, आसन कोट करे अष्टांग धरे भो न्यास करे मुखकारे, दीन दयाल अकाल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे, तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धारियो के चलैया महासत्र के साल है, दान के दिवैया महामान के बढ़िया, अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है, युद्ध के जितैया अविरुद्ध के मिटैया, महाबोध के दिवैया महामान हूँ के मान है, ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता, देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है, पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय त्यावे, गौर करते जी गुण गावे तेरे नाम है, जोगी जोग साधे पौन प्रार्थना किते भांदे, अरब के अरबी आराध तेरे नाम है, फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने, पच्छक में पच्छमी पछाने निज काम है, मरहटा मघेल तेरी मन सो तपस्या करे, दृढ़ वैद लंगी पहचाने तर्मताम है, बंग के बंगाली फिरहंग के फिरंगा वाली, दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है, रोह के रोहले बाग देश के मगेले, बेर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है, गोखा गुण गावे चिनमचीन के शीश न्यावे, तिब्बती ध्याए दोख देह के दलत है, जिन्हें तोहे त्यायो तिन्हें पूरन प्रताप पायो, सर्व तन ताम फन फूल सो फलत है, देव देवतान को सुरेश दानवान को, महेश गंग धान को अभेश कहियत है, रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण, और काहू में ना दीन साध अधीन कहियत है, पाइये ना पार तेज पुंज में अपार, सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है, हाथ की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे, चीटी की चिंगार पहले ही सुनियत है, केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुख चार, केते कृष्णा अवतार केते राम कही है, केते सास केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी, केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है, केते महादीन केते ब्यास से प्रवीण, केते कुमेर कुलीन केते जर्च कहियत है, करत है विचार पैना पूर्ण को पावे पार, ताही ते अपार निराधार लहियत है, पूर्ण अवतार निराधार है ना पारावार, पाये ना पार पे अपार का बखानी है, अद्वे अबनासी परम पूर्ण प्रकाशी, महारूप हूँ के राशि है अनासी का के मानी है, जंत्र हूँ ना जात जाकी पाप हूँ ना माए ताकी, पूर्ण प्रभा की सोचटा के अन्न मानी है, तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है, के मोहनी को मंत्र है निजंत्र का के जानी है, तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है, के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है, कामना की खान है के साधना किसान है, विकर्ता की बान है के बोध को उदार है, सुंदर स्वरूप है के पूपन को पूप है, के रूप हूं को पूरूप है, कुमत को प्रहार है, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधना को रक्षक है, गुणन को पहार है, सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है, के क्रोध को अभूत है, के आछे अबनासी है, काम को कुनिंदा है, खूबी को दहिंदा है, गनीमन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है।

मुख देवनाथ भूम के पूजिया है मोहिया महाबाल के। राजन के राजा महा साज हूँ के साजा, महा जोग हूँ को जोग है तरिया द्रुम साल के। काम ना के कर है के बुद्धता को हर है, के सत्ता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छिरावद छाछ कैसी छतरा ने छपा कर कैसी छप, कालिंद्र के कूल के हंसनी सी सिहा रूप हीरा सी हुसैनाबाद। गंगा कैसी धार चली सातो सेंदर रूल के, पारासी पल्लाऊ गढ़ रूप कैसी रामपुर, सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चंदागढ़, कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फकट सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीत की सुरंगाबाद, निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबानेर। हंस कैसी हाजीपुर देखो मोही आता है, चंद्र सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर, चांदनी सी चंदागाड़ जोन जो ही आता है। गंगा सम गंगा तार पकान सी बिलंदाबाद, कीरत तिहारी की उजियारी सोही आता है। फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी, मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाही आता है। भकरी कंधारी गोर गखरी करते जाचारी, पौन के अहारी तेरो नाम त्याई आत है। पूरब पल्लाऊ काम रूप ओ कमाऊ, सर्व ठौर में बिराजे जहां जहां जाई आत है। पूर्ण प्रतापी जंत्र मंत्र में अतापी नाथ, कीरत तिहारी को ना पार पाई।

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तलवडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईयां, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईयां। तुद विण सिद्धी कन न पाईया, करम मिले ना ही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू दहे

सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस दुज जूं करिय हो रच्छा राख लेहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद।

सेवगण को सेवगण सुख दियो, सतरण को पल मोहम्मद कियो, घड़ घड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने।

कर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आजुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुजता शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पुरख जवन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट न है रक्षा होए ताहि सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर

नानक मेर शरीर का एक दबाव जुग जुग पेर बटाए ज्ञान बुझता है सतगुरु संतोख का धर्म गैर दबाओ त्रेता रत का जोर गैर दबाओ द्वापर तपे